0: पहले हम लोग ग्यारह बजे के
1: ए समय को साथ जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला।

0: गर्भवती महिला को वीडियो एक्सरे सेवा,
1: सर्वसुलभ फार्मेसी सेवा।
0: संपर्क स्थान मिर्दी क्लिनिक, वालिंग नगर पालिका 6 मिर्दी, तल्लो चोक पुल को नजिक।
1: फोन नंबर 0364140087, मोबाइल 9849701746।